ये कसक कसन ये फिक्री है, सिने कातर कबे आम ताहूते। ये कसक कसन ये फिक्री है, सिने कातर कबे आम